0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपार्ड के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने पीएसए चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा पीएसए टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का यह चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

7:08 है स्टूडियो की घड़ी का समय 100.1 FM गोल पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह। और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। और शर्मिष्ठा करती हैं आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और फिर एक बार सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और जी हाँ, समा जो है वो ऐसा ना होता, और अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता। जी हाँ, सुबह का समय है और हर सुबह लेकर आता है एक नया मैसेज, एक नया संदेश, और एक नए संदेश के साथ शुरू हो जाती है हमारी पूरी ही दिनचर्या। और

सारा दिन हम क्या करेंगे नहीं करेंगे इस प्लानिंग को करते हुए शुरुआत हम करते हैं सुबह के साथ, और जैसे जैसे दिन जो है आगे बढ़ता चला जाता है और उस तरीके से हमारा जो काम है वो भी आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि दिन की जो शुरुआत है वो तो बड़े ही तेज़ तरीके से होती है, लेकिन समय जैसे ही गुजरता चला जाता है ऐसा लगता है कि एक अजीब सी थकावट हमें महसूस हो रही है, और जैसे वो मूड नहीं रहा, वो जोश नहीं रहा जिसके साथ हमने दिन की शुरुआत की थी सुबह के समय। जिस तरीके का जोश हम महसूस कर रहे थे वो जोश शायद दिन खत्म होते होते भी समाप्त हो जाता है ना, कई बार ऐसा होता है। और ये जो जोश है इसे बरकरार रखने के लिए कई सारी बातें जो है ध्यान में रखनी होती हैं, तो चलिए बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन फिलहाल सुबह का समय है और एक अच्छे से मूड की ज़रूरत होती है सुबह को अच्छे तरीके से शुरू करने की, है ना। तो चलिए, बहुत से काम हम सब के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, पूरे दिन भर का काम होता है, और दिन की शुरुआत अगर अच्छी ना हो तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो चलिए जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि अलग अलग जानकारियों से लैस ये कार्यक्रम होता है और करेंगे बहुत सी बातें इस कार्यक्रम में, तो जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है और कार्यक्रम का साथ रहेगा पूरे सुबह के 8 बजे। और एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की, लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप इस गीत को, जमीन आसमां फिल्म से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और खूबसूरत तराना इंतजार में है आप सभी के, हसीना मान जाएगी फिल्म से लिया गया है इस गीत को, मोहम्मद रफीक लता मंगेशकर की आवाज में सुनेंगे आप इस गीत को। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, कार्यक्रम चल रहा है सुहानी सुबह।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस बहुत ही प्यारे से नगमे को। इस गीत को सुनते सुनते चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 7:17 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और सुबह का समय है और ऐसे में हमारे दिनचर्या को शुरू करने का समय होता है और दिनचर्या बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से शुरू हो और आने वाले समय में हमारा जो पूरा दिन है वो बिल्कुल सही तरीके से चलता चला जाए, इसीलिए सुबह के समय कुछ एक जानकारी हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत सी जानकारियों में से एक जानकारी है मौसम से जुड़ी हुई। जी हाँ, तो चलिए बताऊँ आपको कि मौसम का मिजाज आखिर आज के लिए कैसा रहेगा और अलीपुर मौसम विभाग की ओर से आखिर कहा क्या जा रहा है कि आज के मौसम का जो रुख है वो कैसा रहेगा। और सुबह सुबह अगर इस तरह की जानकारियाँ हमारे पास हो तो हम बिल्कुल तैयार होकर हमारे काम पर निकल सकते हैं कि अगर बरसात वाला मूड है तो उस तरीके से हमारी प्रिपरेशन होती है और अगर बरसात होने की संभावना नहीं है, हालांकि बरसात का मौसम है तो बरसात हो सकता है कभी भी या फिर किसी भी परिस्थिति में हम पड़ सकते हैं बरसात के मौसम में, तो उस तरह की तैयारी के साथ ही हमें घर से निकलना होता है। और अगर बरसात का मौसम नहीं है लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है ना कि सुबह के समय बरसात वाली बात कोई नहीं हमें पता थी और उसके बाद अगर अचानक से बरसात के साथ आपका मेल मिलाप हो जाता है तो खैर ये तो बिल्कुल ही अलग बात है क्योंकि आपको पहले से नहीं पता होता है इसके बारे में। लेकिन अगर आपको पता हो कि भाई बरसात का मौसम है और ऐसे में कभी भी बूंदाबांदी हो सकती है और बरसात के छींटों के साथ हमारा स्वागत किया जा सकता है, तो

इसकी तैयारी जो है घर से अगर हम करके निकले तो बेहतरी तो हमारी ही होती है ना। तो चलिए अलीपुर मौसम विभाग की ओर से आखिर क्या कहा जा रहा है आज के लिए ये आपको बताऊं। और बताया तो ये जा रहा है कि आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना दी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अधिकतम और न्यूनतम तापमान आखिर अगले 24 घंटों के लिए कितना रहने वाला है ये भी आपको बताती चलूँ। तो अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बताई जा रही है और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है रहने की संभावना बताई गई है। और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा था। और न्यूनतम जी हाँ मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 27.7 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.1 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया था। और अगर अधिकतम आर्द्रता की अगर बात करें तो 94% रिकॉर्ड किया गया था और न्यूनतम आर्द्रता 74% रिकॉर्ड की गई थी। और पिछले 24 घंटों में बरसात बिल्कुल हुई थी और बरसात आखिर कितनी हुई थी ये बताया जा रहा है कि 1.1 मिलीमीटर बरसात को रिकॉर्ड किया गया था पिछले 24 घंटों के दौरान। और आज के दिन के लिए मछुआरे भाइयों के लिए सतर्क वार्ता भी जारी की जा रही है तो इसके बारे में भी आपको बताती चलूँगी इसी कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल मौसम की जब बात आ रही है तो भला मौसम से जुड़ा एक नगमा कैसे न सुनूं और आपको भी भला कैसे न सुनवाऊं, है ना। तो चलिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना। और ये एक ऐसा तराना है ना कि जब भी हम मौसम का जिक्र करते हैं या फिर जब भी मौसम से जुड़ी कोई भी बात करते हैं, मौसम अच्छा हो बुरा हो चाहे कैसा भी हो, हर मौसम का जो मिजाज है वो बिल्कुल ही अलग होता है और हर मौसम की खूबसूरती भी बिल्कुल ही अलग होती है। और हर मौसम को एंजॉय करने का हर इंसान का तरीका भी अलग अलग होता है। तो खैर मौसम के मिजाज की जब बात आ रही है तो चलिए मौसम थोड़ा थोड़ा बेईमान हो सकता है ये भी तो बताया जा रहा है। तो चलिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भला ऐसे मौसम में ये तराना कैसे न सुने, है ना। तो चलिए लोफर फिल्म से ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह। और आगे जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ क्योंकि आज के दिन से जुड़ी बहुत सी बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी इसी कार्यक्रम के माध्यम से। तो फिलहाल ये प्यारा सा तराना।

सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

सुहानी सुबह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब बताऊं आपको उस सतर्क वार्ता के बारे में जिसे साझा किया है अलीपुर मौसम विभाग की ओर से। और आज के दिन के लिए मछुआरे भाइयों के लिए आखिर क्या कहा जा रहा है, चलिए इसके बारे में भी बताऊं। आज के दिन अर्थात 31 अगस्त को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों के पास और उनसे दूर तेज हवाएं जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर कभी कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक के साथ तूफानी मौसम रहने की बहुत ज़्यादा संभावना दी जा रही है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 31 अगस्त को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों के पास और उनसे दूर समुद्र में न जाएं। ये तो थी मौसम विभाग की ओर से मछुआरे भाइयों के लिए सतर्क वार्ता जिसे साझा कर रही थी इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है सुहानी सुबह, जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी वक्त इसी जगह इसी चैनल के माध्यम से। फिर एक बार आज के दिन भी आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को जो कि आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बन चुका है। और आज के इस कार्यक्रम में करने वाली हूँ बहुत सी बातें जो कि जुड़ी हुई हैं आज के दिन के साथ। जी हाँ, इसके अलावा इतिहास से जुड़ी भी बहुत सी बातें साझा होंगी। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई थी आज के दिन को लेकर बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं जिनका जिक्र मैं करने वाली हूँ आज ही के दिन। और इसके अलावा आज खास किस तरीके से मनाया जाता है आज के दिन को, क्या क्या नाम दिया गया है आज के दिन को लेकर, ये सारी बातें साझा होंगी इसी कार्यक्रम में। तो जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ, पूरे 8 बजे तक का साथ है हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से। रुख करते हैं फिलहाल एक फिल्मी गीत की ओर और उसके बाद बातें करूंगी बहुत सी। तो फिलहाल किशोर कुमार की आवाज़ में सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना।

7:35 पैंतीस मिनट संग है आप आपकी रेडियो शर्मिशा के और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुहानी सुबह। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताऊं आपको आज के खास जन्मदिन को लेकर। आज जन्मदिन है जानी मानी लेखिका अमृता प्रीतम का। अमृता प्रीतम 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पंजाबी और हिंदी लेखिका, निबंधकार और कवयित्री रही हैं। जन्म उनका हुआ आज के दिन, साल था 1919। पंजाब से उनका जुड़ाव था, पंजाब में उनका जन्म हुआ था और मूल नाम की अगर मैं बात करूं तो अमृता कौर। उन्हें पंजाबी भाषा की पहली प्रमुख कवयित्री, उपन्यासकार और निबंधकार माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कविता, कहानी, आत्मकथा और निबंधों सहित 100 से ज्यादा पुस्तकें लिखी थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द और पीड़ा को बयां करती है उनकी सबसे जानी मानी और ऐतिहासिक कविता। उनका प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर देश के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिस पर साल 2003 में एक प्रशंसित हिंदी फिल्म भी बनाई गई थी। उनकी चर्चित आत्मकथा के बारे में अगर बात करें तो नाम था रसीदी टिकट, वो भी काफी लोकप्रिय रही। पुरस्कार और सम्मान की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृता प्रीतम ने अपने नाम किया था। उन्हें अपनी लंबी कविता के लिए इस पुरस्कार को दिया गया था। 1969 में दिया गया उन्हें पद्मश्री। भारत सरकार द्वारा साहित्य में योगदान के लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में उनकी प्रसिद्ध रचना के लिए इस पुरस्कार को उन्हें दिया गया था। इसके अलावा पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था लेखिका अमृता सिंह को। इसके अलावा आज के खास दिन को लेकर अगर मैं बात करूं तो उससे पहले ये याद दिलाना चाहूंगी, जी हाँ याद ही दिलाना चाहूंगी कि हम जब छोटे थे ना, तो जी हाँ बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, जी हाँ बचपन में ही हम जब छोटे हुआ करते थे, तब पूरे साल में एक बार, और वो समय होता था सर्दियों का समय, जी हाँ ठंडी के समय में जब स्कूल की छुट्टियाँ हुआ करती थी, विंटर ब्रेक की मैं बात कर रही हूँ, तो विंटर ब्रेक में एक बार के लिए कम से कम माता पिता के साथ हम एक जगह जाया करते थे, जो कि आम तौर पर सभी बच्चों का पसंदीदा एक पिकनिक स्पॉट होता है और उस जगह जाने के लिए बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो जगह है चिड़ियाघर। अब आप ये कहेंगे कि जी हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा मैंने, और आप अपनी भी शायद बात सोचने लगेंगे कि आप भी जब छोटे हुआ करते थे अपने बचपन में, तब आप भी अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ और संग अगर दोस्त भी जुड़ जाएं तो क्या ही बात है। तो जब हम और आप भी, जब हम सब छोटे हुआ करते थे बचपन में, तो चिड़ियाघरों में कम से कम साल में एक बार के लिए तो ज़रूर हमने जाना ही जाना था, है ना। और वो जो जगह थी हमारे मनोरंजन की, बहुत एक अच्छी जगह थी, एक अच्छी पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं इसे। तो उस वक्त ये जो जगह है चिड़ियाघर, ये काफ़ी मनोरंजन वाली जगह हुआ करती थी हमारे लिए। लेकिन उस वक्त इतना तो नहीं पता था कि चिड़ियाघर से जुड़ी भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे ज्ञान का पिटारा थोड़ा और बढ़ा हमारे लिए, और जब हमें पता चला कि चिड़ियाघर को लेकर भी एक ख़ास दिन मनाया जाता है, तब ऐसा लगा कि वाकई में बचपन से जिस जगह को हम देखते आ रहे हैं, क्या इसके पीछे इतनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम बचपन में तो नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े हुए, जब और ज़्यादा किताबों को टटोलने का समय आया, उस समय पता चला कि ये जो चिड़ियाघर है, जो हमारे लिए मनोरंजन की एक जगह हुआ करती थी, उसके लिए भी एक दिन मनाया जाता है और इसके पीछे एक ठोस कारण भी बनाया गया था। तो चलिए आज
उसी के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल जू अवेयरनेस डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है, और ये दिन आखिर क्यों मनाया जाता है? जी हाँ, किसी भी दिन को जब मनाया जाता है तो उसके पीछे एक कहानी, एक इतिहास ज़रूर से जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए इसी के बारे में बात करूँ। राष्ट्रीय चिड़ियाघर जागरूकता दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है, और इसी उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण, शिक्षा और लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने में चिड़ियाघरों के योगदान के बारे में आधिकारिक लोगों को जागरूक करना। जी हाँ, पिंजरे के पीछे जिन जानवरों को हम देखते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि किस तरीके से शेर हो, भालू हो, या फिर अलग अलग तरह के जानवर हो गए, पक्षी हो गए, इन्हें देखकर हम तो मनोरंजन अपना कर लेते हैं, लेकिन पिंजरे के पीछे जो पशु हैं, पक्षी हैं, जिन्हें कैद करके रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए भी एक खास दिन तय किया गया है, जिसको नाम दिया गया नेशनल जू अवेयरनेस डे। और महत्व यही कि ये दिन हमें ये समझने में मदद करता है कि चिड़ियाघर केवल और केवल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये जानवरों की देखभाल, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक आवास के प्रति जागरूकता फैलाने का एक बहुत ही ज़रूरी केंद्र है। और गतिविधियों की अगर बात करूं तो इस दिन विभिन्न चिड़ियाघरों में खासकर शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण पर चर्चाएं होती हैं और जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। तो ये तो रही हमारे बचपन वाली बात, जिसे आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं और बता रही थी आपको कि चिड़ियाघर को लेकर भी एक दिन मनाया जाता है, और वो दिन है आज का, यानी कि 31 अगस्त। इसके अलावा एक और ख़ास वजह से भी मनाया जाता है आज का दिन, वो है इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे। यानी कि ये जो दिन है इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे, वैसे तो ओवरडोज कुछ कुछ क्षेत्र में हानिकारक होता है, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लाभदायक भी होता है। लेकिन क्या ये ओवरडोज लाभ के लिए है या फिर नुकसानदायक, बात को समझाने के लिए बात करूंगी इसके बारे में भी। लेकिन फिलहाल रुख करें एक फिल्मी गीत की ओर, और किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, और उसके बाद बातें करेंगे इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे को लेकर। लेकिन फिलहाल ये तराना आप सभी सुनने वालों के लिए।

7:47 सुहानी सुबह कार्यक्रम सुन रहे हैं। और आप जल्दी से मैं आपको बताऊं जिसके बारे में मैं बात कर रही थी इस तराने को आप तक पहुंचाने से पहले कि इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। और ये दिन उन लोगों के लिए है खासकर जिन्हें बिना वजह जी हाँ ओवरडोज दवाइयों को लेने की आदत होती है, यानी कि कोई भी सामान्य सी बात है तो बस जल्दी से दवाई को ले लीजिए और बिल्कुल आप ठीक ठाक हो जाएंगे। इस तरह की सोच जो लोग रखते हैं खासकर उनके लिए इस दिन को मनाया जाता है और उन्हें अवेयर किया जाता है कि चाहे छोटी छोटी बात क्यों ना हो लेकिन हर बात के लिए दवाई का ओवरडोज लेना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, खासकर जब हम अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं, जी हाँ कई मामलों में हम अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं और खुद ही अपना इलाज करने लग जाते हैं। और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि घर में किसी भी और सदस्य को अगर कोई भी सामान्य सी समस्या है, जैसे सिर दर्द हो गया या फिर थोड़ी सी छी

ही मार ली आपने, बस वो जो व्यक्ति है जिन्हें दवाइयों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपको जल्दी से डॉक्टर वाली सलाह दे देंगे कि भाई आपको ये हुआ है वो हुआ है तो जल्दी से ये दवाई ले लो या फिर वो दवाई ले लो। लेकिन ज़रा आप ही तो बताइए कि क्या इस तरीके से हर मामले में, हर बात में, हर छोटी छोटी बात में दवाइयों को लेना क्या अच्छी बात है? शायद नहीं है ना। और एक बार, दो बार, तीन बार इस तरीके से अगर आप खुद से ही डॉक्टरी करने लग गए तो फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि जिन दवाओं का सेवन आप बार बार करते आ रहे हैं उसका असर होना एक समय में कम हो जाए और उसके बाद जब वाकई में आपको उस दवाई की ज़रूरत है, वो परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उस तरह की दवाइयाँ जिनका आप सेवन करते आए हैं बहुत ज़्यादा समय से, वो उसके बाद आपके शरीर में कोई काम ही ना करें और उसके बाद क्या ही कहना। और उसके बाद जिस परेशानी से आप परेशान हैं उसके लिए आपको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, उन्हें बताना होता है आपकी सारी कहानी और उसके बाद ही डॉक्टर ठीक ठाक तरीके से इलाज कर पाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि हर छोटे छोटे मामले में जब आप खुद से डॉक्टरी करने लग जाते हैं उसे कृपया आप ना करें। जी हाँ, ज़रूरत अगर नहीं होती है तो दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से इस दिन को मनाया जाता है और हर साल आज ही के दिन यानी कि 31 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कि ओवरडोज से जान गंवाने वाले लोगों को याद करने और मादक पदार्थों का एक वैश्विक अभियान ये है। और शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी और हर साल इस दिन को मनाया जाता है एक नए थीम के साथ। और इस बार भी यानी कि साल 2026 में भी एक नया थीम दिया गया है इस दिन को मनाने के लिए। और इस बार के थीम की अगर मैं बात करूं तो अ टाइम टू रिमेम्बर, अ टाइम टू एक्ट, अर्थात 25 वर्ष बाद भी आवश्यकता बनी हुई है। जी हाँ, यही है थीम और आवश्यकता यही है कि आज भी लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ओवरडोज, खासकर दवाइयों का ओवरडोज किसी भी मामले में बिल्कुल भी सही नहीं है और छोटे छोटे मामलों में दवाइयाँ लेना बंद करें और खुद से डॉक्टरी अपने आप पर या फिर परिवार के किसी भी सदस्य पर खुद से डॉक्टरी ना करने जाएं, बल्कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें कि इस तरह की परेशानी आपको है तो इस परेशानी के लिए आखिर क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हो रही थी दवाइयों के ओवरडोज की, जो कि खतरनाक तो है ही, लेकिन जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ओवरडोज से आपको नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि फ़ायदा ही होता है, लेकिन इसके बारे में बात करूंगी मैं अगले कार्यक्रम में। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए और आज के दिन के इतिहास को लेकर थोड़ा सा बताऊं आपको कि आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटी थी आज के दिन। तो 1881 की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में पहली बार आधिकारिक टेनिस चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 1957 की अगर बात की जाए तो फेडरेशन ऑफ मलाया, वर्तमान में मलेशिया, को ब्रिटेन से आज़ादी दी गई थी। 1919 की बात अगर की जाए तो मशहूर साहित्यकार अमृत प्रीतम का जन्म हुआ था, जिनके बारे में मैं आपको बस थोड़ी ही देर पहले बता रही थी। और 1920 की अगर बात की जाए तो अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में रेडियो पर पहली बार समाचारों का प्रसारण किया गया था। 1956 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके अलावा 1968 में भारत के टू स्टेट राउंडिंग रॉकेट, जी हाँ, रोहिणी का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इसके अलावा एक और विषय को लेकर भी बात करना चाहूंगी, वो है आई डोनेशन फॉर्टनाइट। ये जो फॉर्टनाइट है अर्थात पखवाड़ा है, ये किसी एक दिन के लिए नहीं होता बल्कि दो हफ्ते तक चलता रहता है। तो भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक जागरूकता अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि लोगों को नेत्रदान के बारे में शिक्षित करना और कॉर्निया दान एवं प्रत्यारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो आई डोनेशन फॉर्टनाइट के तौर पर 25 से लेकर 8 सितंबर तक मनाया जाता है और लोगों को अवेयर

किया जाता है कि ये जो सुंदर नेत्र हैं आपके, ये आपके बाद किसी और के जीवन में रोशनी दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है सुहानी सुबह करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी जो है वो लगातार यही बताने की कोशिश कर रही है कि आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर करना होगा समाप्त। लेकिन जाने से पहले भला यूं ही कैसे चली जाऊं, इस कार्यक्रम को समाप्त एक अच्छे से कार्यक्रम के साथ करना, एक अच्छे से कार्यक्रम को एक अच्छे से गीत के साथ समाप्त करना ही बेहतर है ना। और इसीलिए आप सब के लिए एक बहुत ही प्यारा सा तराना, और इस तराने को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिएगा इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिल रही हूँ बहुत जल्द, समय रहेगा 9:10, और दोबारा मुझे सुनने के लिए आपने ट्यून करना है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। इसके अलावा इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा आपसे बात होगी, समय रहेगा 11:10। लेकर आऊँगी आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लो आगे उनकी याद, और जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ, सुनते रहिएगा, और बताऊँगी आपको कि आज के उस कार्यक्रम में बात होगी आखिर किस खास व्यक्ति को लेकर। इसके अलावा 107 FM रेनबो पर भी आप मुझे सुन सकते हैं, समय रहेगा 10:02, लेकर आऊंगी नॉनस्टॉप गपशप। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 100.1 FM गोल्ड चैनल पर। आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुहानी सुबह, और आज मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा। और जाने से पहले लता मंगेशकर साथियों की आवाज़ में श्री 420 से ये बहुत ही प्यारा सा तराना आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को

0: तीन साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
4: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
5: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
6: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष

0: पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अचरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 169 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञान वर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-3104-8-0111-3104-44। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने

0: संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliev Adilbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए वे भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि COVID-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमरीका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। ओडिशा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार जन सुनवाई शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लड़ाक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान लगाया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल

0: शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज छठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी उड़ीसा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते हुए देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Elishovich, Chairman of the Cabinet of Ministers. Mr. Modi is visiting Kyrgyzstan at the invitation of President Sadir Zaparov for 26th SCO Summit. On the first day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will hold bilateral meetings with SCO leaders on the sidelines of the summit. Mr. Modi will address

0: the SEO summit tomorrow. More from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi will first interact with the Friends of India in Bishkek today. He will then visit the Mahatma Gandhi Memorial Park and pay floral tributes at the statue of Mahatma Gandhi. The statue was unveiled by Mr. Modi during his visit to Kyrgyzstan in the year 2015. The Prime Minister will also hold bilateral meetings with the several leaders of SEO member countries today. These include meetings with the presidents of Armenia, Kyrgyzstan and Iran, as well as a bilateral meeting with the President of Russia. Mr. Modi will also attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games today. The event celebrates the rich and vibrant cultural heritage of Central Asia. Vikalp Shukla, Akashvani News, Bishkek.
0: Prime Minister Narendra Modi concluded a successful two-day state visit to Tashkent, Uzbekistan, following talks with President Shavkat Mirziyoyev to deepen bilateral ties. Both leaders agreed to elevate India-Uzbekistan relations to a comprehensive strategic partnership. The outcomes of the visit extend well beyond the signing of 11 agreements, from critical minerals and uranium to trade, defense, digital payments and education, from Hindi and Sanskrit to sports and heritage conservation. The two-day visit has given a broad and comprehensive framework to the India-Uzbekistan relationship. A major highlight of the visit came when President Shavkat Mirziyoyev conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Olye Darajali Dostlik, on Prime Minister Narendra Modi. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27. Addressing Indian diaspora in Chicago during her U.S. visit, she said India is likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the U.S.-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. President Draupadi Murmu will address the combined convocation of National Institute of Fashion Technology, NIFT, in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will be conferred degrees on the occasion. Union Minister for Textiles Giriraj Singh, Secretary Ministry of Textiles Neelam Shami Rao will also grace the occasion along with other distinguished dignitaries, members of the Board of Governors, senior officials, faculty members, scholars and graduating students. Odisha faces another spell of heavy to very heavy rain today, with the weather system over the northwest bay of Bengal continuing to influence the state. The IMD has forecast extremely heavy rainfall at isolated places today, with a red warning in force for Bargarh and orange warnings for several districts of western Odisha. The fresh spell comes when parts of Kendrapara, Bhadrak and Jajpur are still recovering from the recent floods, raising concerns of renewed inundation in vulnerable areas. Nepal has intensified efforts to free hundreds of people trapped inside tunnels at hydropower projects, including the Trishuli 3A site, following Wednesday's flash floods. Rescuers, including experts from India and China, have been attempting to make contact but have so far received no response from inside the tunnel. Hundreds of the 2,500 people reported missing are believed to be employees of Nepal's hydropower projects. Wednesday's disaster has killed at least 794 people and more than 2,500 people are missing in Nepal. And in women's cricket, India began the T20 Asia Cup 2026 campaign in dominant fashion, beating Thailand by 94 runs at the Dubai International Stadium last night. Batting first, India scored 159 runs for the loss of 9 wickets in 20 overs. In reply, Thailand were bowled out for just 65 runs in 15.3 overs. And in football, India under-20 men's national team will begin their AFC under-20 Asian Cup China 2027 qualifiers against Syria at the Dostlik Stadium in Tashkent today. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar, Akashvani se Vishv Darpan ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ जलडमरु मध्य में लराक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। मलेशिया के सरम्बन में भारत के अभिज सिंह ने तुआंकू मोहरीज स्क्वाच ट्रॉफी जीती और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
2: इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल सम्पन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
2: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते हुए देखा गया था।
5: ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। जुलाई के आखिर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जल डमरू मध्य से जुड़े दो सप्ताह के अमरीकी सैन्य अभियान को रोकने के बाद लद्दाख पर ये हमला हुआ। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। ये घटनाक्रम टकराव में तेजी को दर्शाता है जो जून से काफी हद तक शांत बना हुआ था। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
2: भारतीय नौसेना आज मुंबई

0: स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएससीबी निपुण को शामिल करने जा रही है।
1: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाओ अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल समाचार।
2: दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण यह फैसला किया गया है। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू मुहुरीज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लियोंग को 3-2 से हराया। हॉकी में जर्मनी ने पुरुष विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। और फुटबॉल में भारत की अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय टीम आज ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में सीरिया के खिलाफ AFC अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत करेगी। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: सिक्किम के निशानेबाजों ने 13वीं उत्तर पूर्व जोन निशानेबाजी चैंपियनशिप में असाधारण प्रदर्शन किया।
3: नॉर्थ ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का समापन कल गुवाहाटी असम में हुआ। सिक्किम के लक्ष्मण अधिकारी ने इस चैंपियनशिप में मास्टर पुरुष 10 मीटर एयर पिस्तौल व्यक्तिगत वर्ग में ब्रोंज पदक जीता। ये नॉर्थ ईस्ट जोन पर सिक्किम का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी निशानेबाज द्वारा जीता गया पहला पदक है। सिक्किम के दो निशानेबाजों अनु छेत्री और छिरिंग यांगदेन भूटिया ने 13वीं नॉर्थ ईस्ट जोनल शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। अनु छेत्री ने 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में क्वालिफाई किया, जबकि छिरिंग यांगदेन भूटिया का चयन 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के लिए हुआ है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमरीका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई। 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। मलेशिया के सेरेम्बम में भारत के अभय सिंह ने तुआंकू मुहुरीज स्क्वाश ट्रॉफी जीती। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good morning. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिजिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिजिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल राजधानी बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा

0: पाकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा ने दिखाया है कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहां व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। अमरीका ने कल रात होर्मूज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी प्रसारक के अनुसार इस हमले में ईरान के कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ. प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति एक बेहतरीन प्रशासक और विद्वान थे। उनकी अमिट विरासत नए नेताओं के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने कल थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

11:10 है स्टूडियो घड़ी का समय। फिर एक बार शर्मिशा सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती है। चैनल आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड और इसके अलावा

ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और इस वक्त लेकर आई हूँ कार्यक्रम कुछ अलग कुछ हटके, क्योंकि 11:10 पर 100.1 FM गोल्ड पर आप सुनते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम होता है लो आ गई उनकी याद। और आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस कड़ी में बात करूंगी एक ऐसे अभिनेता को लेकर जिन्होंने अपने करियर के जीवन काल में, वैसे तो 42 फिल्मों में उन्होंने काम कर लिया है, और सिर्फ इतने ही फिल्मों में उन्होंने एक नेशनल अवार्ड और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बात कर रही हूँ अभिनेता राजकुमार राव की, और बेहतरीन अभिनय के जरिए उन्होंने ये साबित कर ही दिया कि वे भी किसी से कम नहीं है। राजकुमार राव आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे मनाते हैं, और उनके जन्मदिन के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं आकाशवाणी की ओर से और सभी चाहने वालों की ओर से। वे लगभग 42 फिल्मों में काम कर चुके हैं और एक नेशनल अवार्ड के साथ साथ 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने अब तक अपने नाम कर लिया है। बातें होंगी और भी बहुत सी आज के इसी कार्यक्रम में, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को और सुनवाऊं आपको मोहम्मद फैज की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत। मिस्टर एंड मिसेस माहे फिल्म से सुनेंगे आप ये गीत।

11:17 है स्टूडियो घड़िया समय और रहलो आ गई उनकी याद कार्यक्रम में। आज बातें हो रही हैं अभिनेता राजकुमार राव को लेकर, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके फिल्मी करियर को लेकर कुछ छोटी मगर रोचक बातें साझा हो रही हैं आज के इसी कार्यक्रम के माध्यम से। और राजकुमार राव के सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्में उनकी बेहतरीन अभिनय क्षमता और अलग अलग विषयों वाली कहानियों के लिए जानी जाती हैं। डेब्यू फिल्म की अगर बात करें तो उन्होंने साल 2010 में निर्देशक दिवाकर बैनर्जी की फिल्म लव सेक्स और धोखा से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। और अगर प्रसिद्ध फिल्मों की बात की जाए तो उन्हें शाहिद, न्यूटन के अलावा क्वीन, बरेली की बर्फी और स्त्री के साथ साथ काईपोछे जैसे कुछ बेहतरीन फिल्मों के लिए विशेष पहचान उन्हें मिली थी। अब सुनवाना चाहूँगी अंकित तिवारी और निकिता गांधी की आवाज़ में फिल्म बधाई हो से एक बहुत ही प्यारा सा तराना। और इस फिल्म में राजकुमार राव के साथ भूमि पेडनेकर के बेहतरीन अभिनय को हम सभी ने देखा था, तो चलिए सुनवाऊं ये गीत।

कम उम्र में ही नाटक करना शुरू कर दिया था हमारे आज के अभिनेता ने। नाटक यानी कि उस नाटक की बात नहीं कर रही हूँ, जी हाँ स्टेज शो की बात कर रही हूँ। आज से ठीक 41 साल पहले हरियाणा के गुरुग्राम में राजकुमार राव का जन्म हुआ था। पिता सत्य प्रकाश यादव हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे और माँ कमलेश यादव हाउसवाइफ थी। एक्टर बनने की तैयारी राजकुमार ने कम उम्र से ही शुरू कर दी थी। स्कूल में होने वाले नाटक में वे हमेशा ही भाग लिया करते थे। ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली से कंप्लीट की और नाटक

करने का सिलसिला यहाँ भी जारी रहा। दिल्ली में मानो राजकुमार के सपने को और पंख मिल चुके हों। यहाँ पर वे क्षितिज थिएटर ग्रुप और श्री राम सेंटर के साथ एक साथ नाटक करने लगे थे और इसके बाद एक के बाद एक स्टेज शो करने का उनका जो सिलसिला शुरू हुआ वो बस चलता ही चला गया।

11:25 और आज के हमारे कलाकार हैं अभिनेता राजकुमार राव। उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ छोटी मगर रोचक बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं। राजकुमार राव को नाटक करना और देखना दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को कभी करियर ऑप्शन के तौर पर नहीं चुना था। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसे किरदार को देखा जिसे देखने के बाद उन्होंने एक्टर बनने का फैसला कर लिया। ये शख्स थे मनोज बाजपेयी, जिन्हें ऑन स्क्रीन देखने के बाद राजकुमार ने ये कदम उठाया। फिर क्या था, फिर उन्होंने 2008 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में उन्होंने भर्ती लिया और एक्टिंग उन्होंने सीखनी शुरू की, और उसके

बाद उनके एक्टिंग का जो करियर था उसे उन्होंने और थोड़ा सा आगे बढ़ाया। लेकिन कई बार होता ऐसा है ना कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उस हिसाब से हमें मेहनत का फल नहीं मिलता, और जब फल नहीं मिलता तब हम थक हार जाते हैं और मायूस भी हो जाते हैं कि और साथ में ये भी सोचने लग जाते हैं कि शायद ये जो फील्ड है जिस फील्ड में हम अपना नाम कमाना चाहते हैं शायद ये फील्ड हमारे लिए है ही नहीं, हम बेकार में इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, है ना। होता है ना ऐसा, चाहे आप किसी भी फील्ड के लिए मेहनत कर रहे हों उस फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हों लेकिन जब आप देखते हैं कि आपकी जो मेहनत है वो कोई रंग नहीं ला रही है उसके बाद फल, यही तो होता है कि आप बिल्कुल निराश से हो जाते हैं और अपने आप से ये कहने लगते हैं कि शायद हम में ही वो काबिलियत नहीं है जिसके लिए हम इतनी ज़्यादा परिश्रम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हर समय ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। जी हाँ, समय सबका बदलता है और ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे आज के कलाकार के साथ, हमारे आज के अभिनेता के साथ। मेहनत तो बहुत की लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसका जो परिणाम है संग संग उन्हें नहीं मिला, बल्कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार उनका भी समय आया, उन्हें भी चांस मिला एक फिल्म में काम करने का। और जैसे ही उस फिल्म में उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, ठीक उस फिल्म के सक्सेसफुल होने के बाद एक फिल्मों की लाइन लग चुकी थी। बात करूंगी उन फिल्मों के बारे में भी, लेकिन फिलहाल आशीष कौर और देव नेगी की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

11:31 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 100.1 FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद। और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो शर्मिशा के साथ। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो जो श्रोता अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि आज की इस कड़ी में आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव। आज है उनका जन्मदिन और जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं के फिल्मी करियर को लेकर कुछ छोटी छोटी बातें आप सभी श्रोताओं तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। तो चलिए आगे थोड़ी और बातें करते हैं आज के हमारे अभिनेता को लेकर। तो जब राजकुमार राव मुंबई पहुंचे तब उन्हें रहने के लिए मिला एक छोटा सा घर। और पता है आपको उस छोटे से घर में रहने के लिए उन्हें आखिर कितने पैसे देने पड़ते थे और आखिर में इन पैसों को चुकाने के बाद उनके अकाउंट में कितने ही पैसे रह जाते थे। चलिए बताऊँ आपको, उस घर के लिए एक छोटा सा घर तो उन्हें मिला था रहने के लिए, लेकिन उस घर के लिए उन्हें हर महीने 7,000 रुपये देने पड़ते थे जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। महीने के खर्च के लिए लगभग 15,000 से 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी। कभी कभी अकाउंट में बस 18 रुपये ही बचे रह जाते थे और इंस्टीट्यूट आने जाने की कुल दूरी 70 किलोमीटर थी और इसे वो साइकिल से पूरा किया करते थे। जी हाँ, मेहनत मशक्कत तो उन्होंने अपने आप को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा की थी और आखिरकार उन्हें उस मेहनत का फल भी मिला। इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स करने के बाद राजकुमार का असली संघर्ष शुरू होता है। जी हाँ, इस संघर्ष के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। उनका कहना था कि शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे एड्स में काम किया था, ऐसा करके वे महीने में 10,000 रुपये कमा लेते थे। कई बार ऐसा होता था कि महीने भर काम नहीं मिलता था, दोस्तों के साथ खाना शेयर कर उन्हें खाना पड़ता था, ऑडिशंस के लिए दूर दूर भटकते रहते थे, फिर भी कोई काम नहीं मिलता था। उनका सपना था कि वे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करें और लेकिन उन्हें रोल छोटे ही ऑफर हुआ करते थे। बीतते वक्त के साथ राजकुमार कुछ पाने की उम्मीद खोने लगे थे। उन्हें लगा कि वे इस फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी किस्मत पलटी। 2010 की फिल्म रन में राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया। इस फिल्म के बाद उनके पास फिर से काम की कमी हो गई। तो देखा आपने राजकुमार राव के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमें सीखने को यही मिलता है कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, परेशानियां तो जीवन के साथ जुड़ी ही रहती हैं, लेकिन इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि हमें हार मान जाना है और हार कर बस चुपचाप बैठे रहना है, बल्कि आपका काम तो ये है कि आपको स्ट्रगल करते ही रहना है बिना इस उम्मीद को छोड़े कि ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। और इसी उम्मीद के साथ राजकुमार राव भी अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए और स्ट्रगल कहीं ना कहीं जाकर तो ख़त्म हुई उनकी, है ना, और उसके बाद सक्सेस ने उनके कदमों को चूमना शुरू किया। बात करूँगी उसके बारे में भी, लेकिन फ़िलहाल एक प्यारा सा तराना।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

11:45 होने के हुए हैं और इस वक्त बात हम कर रहे थे राजकुमार राव के स्ट्रगलिंग जीवन को लेकर और अभी भी उनके जीवन में सक्सेस को लेकर जो स्ट्रगल वो कर रहे थे वो अभी भी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ साल उन्होंने ऑडिशंस के चक्कर लगाकर ही गुजार दिए थे और इसी दौरान उन्होंने फिल्म लव सेक्स और धोखा के लिए ऑडिशन उन्होंने दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि इस फिल्म में उन्हें काम ज़रूर मिल जाएगा। कई दिनों तक कन्फर्म कॉल का इंतज़ार वे कर रहे थे। कई दिन बीत गए लेकिन कॉल नहीं आया। एक दिन वे घर पर अकेले ही थे और तभी फोन की घंटी बजी, जो कि उनकी जिंदगी का सबसे अहम फोन कॉल बनकर रह गया। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई कि वे फिल्म के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और ये सुनकर ही, बस इसी खबर को सुनकर वे झूम उठे, नाचने लगे। और पता है, ये जो खुशखबरी उन्होंने सुनी थी इसे उन्होंने सबसे पहले किसके साथ शेयर की, तो चलिए आपको बताऊं। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को कॉल करके ये खुशखबरी बताई और फिल्म में राजकुमार की एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने लगभग 10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। चलिए अब बताऊं आपको उनके सरनेम को चेंज करने के बारे में कि आखिर क्या कहानी रही कि उन्होंने अपने सरनेम को ही चेंज कर दिया था। साल 2014 में राजकुमार ने अपना सरनेम चेंज कर लिया था। हम जानते हैं कि राजकुमार अपना सरनेम राव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असलियत में उनका जो सरनेम है राजकुमार के बाद वे लगाते थे यादव, लेकिन साल 2014 में उन्होंने यादव के जगह राव लगाना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने अपने नाम में एक और एम भी

जोड़ लिया। इसके बाद वे अपना नाम राजकुमार राव यानी कि RAJKUMMARRAO लिखने लगे थे। इस बारे में उनका कहना था कि मैं दोनों सरनेम में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि दोनों पारिवारिक नाम है। जी हाँ, दोनों नाम जो है परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ तक पहले नाम में दोहरे एम का सवाल है, ये उनकी माँ की इच्छा थी कि इस तरीके से उनके नाम में परिवर्तन किया जाए। और तो भाई माँ की जो आज्ञा है, माँ की जो इच्छा है, उसे बेटे ने पूरी की। तो बात होगी और भी उनके जीवन से जुड़ी। जी हाँ, उनके जीवन में इस फिल्म के साथ उनका जो फिल्मी करियर है, एक्टिंग का करियर है, वो तो चलना शुरू हो गया, लेकिन उनके जीवन का जो सफ़र है वो किस तरीके से चला और किसके साथ उन्होंने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया, बताऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत।

साल 2010 में राजकुमार एक्ट्रेस पत्रलेखा से उन और दोनों का कनेक्शन था साल 2010 में और रिलेशनशिप में वे दोनों जुड़ चुके थे और उसके बाद साल 2021 में दोनों ने शादी के बंधने का फैसला किया था। एक इंटरव्यू के दौरान पत्रलेखा ने बताया था कि उन्होंने लव सिक्स और धोखा फिल्म में पहली बार राजकुमार राव को देखा था और पहली बार पत्रलेखा को लगा था कि राजकुमार फिल्म के किरदार की ही तरह बहुत ही अजीब है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि यही अजीब अभिनेता उनके जीवन के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा के तौर पर जुड़ जाएंगे और उसके बाद लेकिन हालांकि ऐसा था नहीं। जब उन्होंने फेस टू फेस राजकुमार राव से मुलाकात की और उसके बाद उनका ये जो वहम था, अजीब होने वाला वहम जो था, वो जल्द ही कट गया और उन्हें ये समझने में देरी नहीं लगी कि ये जो अजीब दिखने वाला जो इंसान है, ये जो अजीब किरदार है, उससे वाकई में दोस्ती की जा सकती है, आगे बात को बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव ने एक एड में पत्रलेखा को देखकर उनसे शादी करने का मन बना लिया था और इसी को तो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, जो कि पत्रलेखा और हमारे आज के अभिनेता राजकुमार राव को एक दूसरे से हो गया था। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त। बात कर रहे थे आज के इस कार्यक्रम में अभिनेता राजकुमार राव को लेकर बहुत सी बातें, उनके फिल्मी करियर को लेकर, उनके स्ट्रगल को लेकर आज बात हो रही थी इस कार्यक्रम में। और फिलहाल रुख करते हैं ऐश किंग और सचिन जिगर की आवाज़ में ये इस गीत की ओर और सुनते रहिए इस गीत को और उसके बाद एक और गीत का समय हमारे पास रह जाएगा, सुनवाऊंगी आपको एक और तराना।

बरेली की बर्फी फिल्म से सुनिए इस कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, और इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिलूंगी बहुत जल्द, जी हाँ, कल सुबह फिर से आप सभी श्रोताओं से बात होगी इसी जगह इसी चैनल पर। तब तक रेडियो ट्यून रहेगा 100.1 FM गोल्ड के साथ। सुन रहे थे कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, और अब से बस थोड़ी देर में दोबारा आप मुझे सुन सकते हैं। और फिर से मुझे सुनने के लिए आपने ट्यून करना है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। ठीक 12 बजे लेकर आऊंगी दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा चैनल, जी हाँ, FM गोल्ड चैनल, जिसे आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड इस फ्रीक्वेंसी पर, और सुनते रहिए कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हरिजीत सिंह की आवाज में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताश

ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय

0: मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today interacted with the Friends of India in Bishkek on the first day of his two-day visit to Kyrgyzstan. 4 delegations working with India in various fields were present on the occasion. After this, Prime Minister Modi paid floral tributes to Mahatma Gandhi at his statue situated at the Mahatma Gandhi Memorial Park in Bishkek. The Prime Minister will also hold bilateral meetings today with leaders of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, member states. These include meetings with the heads of state of Russia, Iran, Kyrgyzstan and Armenia. Tomorrow, on the second and final day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization. In his departure statement on Saturday, Mr. Modi said he is looking forward to advancing India's vision for the region based on security, connectivity and opportunity. He also said India will work with SCO members towards a region free from terrorism, separatism and extremism. Mr. Modi will also attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games. The Indian Navy today commissioned INS Nipun, the second diving support vessel of the Nistar class, at Naval Dockyard, Mumbai. Speaking at the commissioning ceremony, Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, said that amid a period of strategic churn, Nipun is going to be a powerful addition to the Navy's specialized underwater capabilities required for

बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियान

0: भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Of the Gandak and Kosi rivers have risen in Bihar. To regulate the river flow, all 36 gates of the Valmiki Nagar barrage and 25 of the 56 gates of the Birpur barrage at Kosi have been opened. In football, India under-20 men's national team will begin their AFC under-20 Asian Cup 2027 qualifiers campaign against Syria at the Dost Lake Stadium in Tashkent today. Drawn in Group B alongside hosts Uzbekistan and Bangladesh, India enter the qualifiers with the objective of returning to the AFC under-20 Asian Cup for the first time since 2006. In women's cricket, Bangladesh will take on Indonesia in the Group B match of the Women's T20 Asia Cup in Dubai today. The match is scheduled to begin at 8 p.m. Indian Standard Time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all six pillars of Semicon India Programme 2.0 with a total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people are still missing. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
3: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा

0: देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
1: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
3: कॉन्फिडेंस टू दी ग्लोबल इंडस्ट्री।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
5: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4,000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर है। एक रिपोर्ट।
6: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया।

0: के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट बोट INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
0: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर-20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर-20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का

सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर दृश्य कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं।
1: सघन सावन

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे।

0: दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, ना कोई खेलने वाला है बाजी और ना कोई चाल चलता है।
1: लाख बार उसमें

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

0: बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादरो जापरोफ के बीच बैठक जारी है। दो दिन के किर्गिस्तान दौरे पर आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि आईएनएस निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उसके 18 वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4th भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति

संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव

सूची नवंबर में जारी की जाएगी। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में आज भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम का मुकाबला सीरिया से होगा। ये मैच ताशकंद में भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से होगा। भारत मेजबान उज्बेकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। दो दिन के किर्गिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक

0: बैठकों में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की भी समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग स्पोर्ट पोत आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि आईएनएस निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय बचाव दल चिली में लांगटांग में पानी संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगाई मैदान वाले इलाके, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक आंधी तूफान की संभावना है।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: 5:21 और 2 सेकंड्स एकदम सही समय स्टूडियो की घड़ी में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सुन रहे हैं चयनिका के साथ आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स, और आज भी हम आपको सुनवाएंगे पुराने हिंदी फिल्मी गीत जो न केवल आपका जो दिल है उसको गुलजार कर देंगे बल्कि आपकी चारों तरफ जितनी भी दुखदाई चीज़ें हैं उन सब की तरफ आपका जो नज़रिया है वो बदल देंगे। इतनी शक्ति है म्यूज़िक में, इतना पावर है संगीत में, और यही जो पावर है ये हमें भी तो जोड़ता है। ये कड़ी है जो मेरे और आपके दिल को एक साथ बांधे रखती है। क्लासिक सुनते सुनते चाय और कॉफ़ी की चुस्कियाँ अगर आप भी फ़िलहाल ले रहे हैं तो मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा सा माहौल आपके पास आपके घर के अंदर अभी बना हुआ है, और इस माहौल को खूबसूरत यूँ ही हम रखेंगे। लेकिन ये जो रेडियो है ना, ये जिस तरह से हमारे जीवन में अपनी जो इम्पोर्टेंस है इसको बनाए हुए है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये माध्यम ही ऐसा है। ये माध्यम ऐसा है जो न केवल दिलों को जोड़ता है बल्कि कठिन समय में हमारा हौसला बनता है, हमें भरोसा दिलासा देता है। ये वो माध्यम है जो जब मुसीबत का समय हो, जब इमरजेंसी हो, जब आपातकालीन स्थिति आ जाए तो फिर ये ज़रूरी खबरें हम तक पहुंचाने का काम करता है। ये वो माध्यम है जो बिछड़े हुए दोस्तों को एक दूसरे से पत्राचार के माध्यम से या गीतों की फरमाइश के माध्यम से जोड़ने का काम करता है। और समाचारों की मैंने जब बात की तो बहुत ही एक अहम हिस्सा है रेडियो का। तो क्या आप जानते हैं कि रेडियो के माध्यम से समाचारों का पहला प्रसारण आज ही के दिन 1920 में अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में हुआ था। 31 अगस्त 1920 को द डेट्रॉइट न्यूज अखबार द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन 8MK, जो बाद में WWJ के नाम से जाना गया, डेट्रॉइट मिशिगन में दुनिया के पहले रेडियो समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था इसी रेडियो स्टेशन से। और ये प्रसारण स्थानीय और राज्य के प्राथमिक चुनावी परिणामों को साझा करने के लिए किया गया था। इस ऐतिहासिक कदम ने जनसंचार और रेडियो पत्रकारिता की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की। और युग भले ही बदलते रहे, एक के बाद एक नया दौर आए, लेकिन रेडियो जो है इसका जो जलवा है, इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो महत्व है, वो कभी भी हमारी जिंदगी में कम नहीं होगा, है ना। इसी बात पर एक खूबसूरत सा गीत हो जाए, सुरमई शाम का वेलकम करते हुए सुरमई शाम सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चरिका के साथ सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, और आज 31 अगस्त है, हम याद कर रहे हैं अमृता प्रीतम को। पंजाबी की लोकप्रिय कवित्री और लेखिका अमृता प्रीतम का आज ही के दिन जन्म हुआ था गुजरांवाला गांव में 1919 में। लाहौर में शुरुआती जीवन बीता और वहीं उनकी पढ़ाई भी हुई। कम उम्र में ही मां के निधन के बाद उन्होंने बहुत अकेलापन झेला और कविताएं लिखनी शुरू की। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द ने उनके मन को झकझोर दिया, जिससे उनकी साहित्यिक और वैचारिक गहराई और बढ़ी। उनके पास मानवीय भावनाओं को बारीकी से चित्रण करने का एक बेमिसाल हुनर था। ऐसी कई ऐतिहासिक घटनाओं पर उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे जहां इंसानी रिश्ते उभर के आते हैं, इंसानों के जो गुण हैं, मानवीय जो गुण हैं वो

करके आते हैं। अमृता ने अपनी लोकप्रिय आत्मकथात्मक कृति रसीदी टिकट में अपने उथल पुथल भरे जीवन के सारे पन्ने पाठकों के सम्मुख बिखेर दिए हैं। वर्ष 1956 में उनकी कविता संग्रह सुनहरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। फिर कागज ते कैनवस के लिए आप भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित हुई। भारत सरकार द्वारा आपको 1969 में पद्मश्री और 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मुलाकात कविता से उद्धृत कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी आपको, जिनका अनुवाद अमिया कुंवर ने किया है। मुझे पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ में से कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के कई बादल गरजते दिखते, जैसे वे नसीब होते हैं राहगीरों की। कई बादल घूमते चक्कर खाते, खंडहरों के खोल से उतरे खतरों जैसे कई बादल उठते और गिरते थे। कुछ पूर्वजों की फटी पत्रियों जैसे कई बादल घिरते और घूरते दिखते, कि सारा आसमान उठ की मुट्ठी में हो और जो कोई भी इस राह पर आए वह जर खरीद गुलाम की तरह आए। आपके द्वारा लिखे गए उपन्यास पिंजर का ये गीत सुनवाना चाहूंगी प्रीति उत्तम निहार और जसविंदर नरूला की आवाज में।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर
1: हंड्रेड पॉइंट वन FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
2: परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत प्यारे श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे स्माइल यानी आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता से जुड़ी ये परियोजना। आज स्माइल की उपयोजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की हम बात करेंगे। माध्यमिक विद्यालय और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम किया जा सके और उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं का समर्थन किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य 9वीं और उससे ऊपर पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। ट्रांसजेंडर छात्रों को आगे अध्ययन करने में सहायता करना ताकि वो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए खुद को तैयार कर सकें और समाज में अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान पा सकें, क्योंकि वो पढ़ाई करने और गरिमा के साथ रहने में शारीरिक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से कई बाधाओं का सामना करते हैं। कभी कभी ऐसे छात्र अपने अव्यक्त कौशल का उपयोग करने से वंचित हो जाते हैं और इस तरह से वो अपने जीवन में आए अवसरों को खो देते हैं। सरकारी या निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसमें सरकार के ऐसे आवासीय संस्थान और संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित योग्य निजी संस्थान शामिल हैं। आइए अब आपको बताती हूँ पात्रता के बारे में। छात्र के पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से जारी ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र होना चाहिए। छात्रवृत्ति केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। उम्मीदवार को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अन्य प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए और इस योजना के तहत छात्रों को दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा स्वीकार करने की तारीख से कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, ये ध्यान में रखना है। हालांकि उम्मीदवार पुस्तकों और उपकरणों की खरीद के लिए या इस योजना के तहत भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि के अलावा बोर्ड और ठहरने के खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से मुफ्त आवास

0: या अनुदान या तदर्थ मौद्रिक सहायता स्वीकार कर सकता है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी हर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। transgender.dosje.gov.in ये है वो आधिकारिक वेबसाइट जिस पर आप अगर जाएं तो हर तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने प्यारे श्रोताओं परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत बात की स्माइल की उपयोजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चैनिका के साथ सुन रहे हैं आप चाय और क्लासिक्स एफएम गोल्ड कोलकाता पर। अभी फिलहाल घड़ी में समय 5:45 और 15 सेकंड्स। और आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में एक बड़ी विशेष तरह के आयोजन के हम साक्षी हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नेशनल आई

0: नेशन फोर्टनाइट राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। भारत भर में हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाने वाला ये एक एनुअल उत्सव है, वार्षिक अभियान है, जिसका उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अपनी आंखें दान करने का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। लोगों को मरणोपरांत नेत्रदान और कॉर्निया दान के महत्व के बारे में बताने के लिए इस पखवाड़े की बड़ी भूमिका है। और क्या आप जानते हैं कि चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं? और इसी सिलसिले में हमने बात की एक बेहद खास व्यक्ति के साथ, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर श्री निर्मल दत्ता से। वो क्या कहते हैं इस विषय में, चलिए जानते हैं।
1: नमस्कार, माइसेल्फ निर्मल कुमार दत्त, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न रीजन, IPJM, कोलकाता। दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 41st नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों में नेत्रदान के ऊपर जागरूकता बढ़ाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमारा देश में लगभग 12 से 14 लाख लोग अंधेपान का शिकार है, जिसका मेन इलाज है कॉर्निया, जो हमें नेत्रदान से मिलता है। इसीलिए ये नेत्रदान के लिए हमें जागरूकता पैदा करना होगा और लोगों को समझाना होगा कि मृत्यु के बाद अगर कॉर्निया डोनेशन वो करते हैं तो वो डोनेशन से 2 या 4 लोगों को आंखें का रोशनी मिल सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज ए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर मेरा मानना यह है कि अगर हम 10 फैमिली को डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें 7 से 8 लोग राजी होता है, ये हमारा मानना है। मैंने हमने देखा है, हमने तो सॉलिड ऑर्गन के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तब देखता है कि अगर वो हमारा सक्सेस रेट 70-80% होता है। तो हम अगर ऐसे ही प्रोसेस जारी रखते हैं कॉर्निया डोनेशन के लिए भी, तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगा। इसीलिए मेरा मानना ये है कि हमको इसके ऊपर जागरूकता और भी ज्यादा करना होगा और लोगों को इस काम में आगे आने के लिए अनुरोध करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम बहुत आगे जाएगा और बहुत लोगों को ये दृष्टि रिटर्न आएगा।
0: बिल्कुल, आशा जो है मन में वो रखनी है और इस अभियान को जितना ज्यादा संभव हो वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से प्रचार इसका किया जाना चाहिए। अपने परिवार और मित्रों से, स्वजन जो हैं आपके, उनसे भी आप ये बात डिस्कस कीजिए, क्योंकि एक बहुत महत दान है नेत्रदान, महादान आप कह सकते हैं। और जरा सोचिए, हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में हमारा एक हिस्सा दूसरों के जीवन में उजाला बनकर रह जाएगा, कितनी अच्छी बात है ना। आपकी आंखें इस दुनिया से नहीं जाएंगी, तो चलिए मिलकर हम सब नेत्रदान का संकल्प लें और ऐसे लोगों को एम्पावर करें जो इस दुनिया के रंगों से अनजान हैं।

जारी है कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स और अनवर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना, मैंने आपको सुनवाया फिल्म जनता हवलदार से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन का संगीत है। और अब मैं आपको बताऊं कि आज दो और लोग हैं ऐसे जो बना रहे हैं अपना जन्मदिन। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जावागल श्रीनाथ की एक तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो बेंगलुरु मेट्रो में आम यात्रियों की तरह सफर करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में श्रीनाथ ट्रॉली बैग लेकर मेट्रो में खड़े दिखाई दे रहे हैं और न कोई तामझाम है साथ में, न ही कोई खास इंतजाम, न कोई सिक्योरिटी, और उनकी यही सादगी फैंस को बहुत पसंद आ रही है। भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं श्रीनाथ। याद है आपको वो वाले दिन, भारत के लिए 67 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें 236 विकेट्स और 229 वनडे इंटरनेशनल में 305 विकेट्स चटकाने वाले श्रीनाथ वनडे में 300 से अधिक विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज हैं। 2003 में आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, इसके बाद आईसीसी मैच रेफरी के तौर पर आपने अपनी दूसरी पारी शुरू की है। और इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, ढेर सारी बधाई जावागल श्रीनाथ। और एक और बेहद खास शख्सियत है जिनका संबंध हमारे शहर कोलकाता से है। एकदम अलग फील्ड के एक महान व्यक्तित्व, एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता, लेखक और गीतकार, जिन्होंने मुख्य रूप से बांग्ला सिनेमा को एक नई पहचान दिलवाई। कोलकाता शहर की भूमि पर जितने भी मेधावी प्रतिभावान कलाकार हुए हैं उनमें ऋतुपर्ण घोष का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। आपकी आज जयंती है और अपनी पढ़ाई जब आपने पूरी की तो विषय जो था, ऐसा सुनने में आता है कि आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी, लेकिन उसके बाद फिल्मों का रुख कर लिया और 20 साल की उम्र में फिल्मों में आने से पहले आपने कॉपीराइटर के तौर पर काम करना शुरू किया और बेहतरीन कॉपीराइटर्स की लिस्ट में आपके नाम का शुमार था।

था उस दौर में कोलकाता में। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपका लोहा मानती थी, आपके स्लोगन और वन लाइनर्स काफ़ी अच्छे माने जाते और लोगों की जबान पर चढ़ जाते थे। 1992 में रितु पर्णो की पहली फिल्म हीरे रांगटी रिलीज हुई थी और इसी साल इनकी दूसरी फिल्म आई जिसका नाम था 19 अप्रैल। इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया, जनता और क्रिटिक्स दोनों का प्यार मिला, 2 नेशनल अवार्ड्स जीते थे इस फिल्म ने और यहीं से रितु पर्णो के अवार्ड विनिंग फिल्मी करियर की शुरुआत हो चुकी थी। चोखेर बाली और रेनकोट जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए आज भी आप याद किए जाते हैं। अपनी फिल्मों के लिए 12 नेशनल और कई इंटरनेशनल अवार्ड्स आपने जीते और एक संवेदनशील और प्रतिभावान फिल्म मेकर के तौर पर आप हमेशा हम सबके दिल में यूं ही जगह बनाए रहेंगे। आपको भावभीनी श्रद्धांजलि। और आपको याद करते हुए इस पहले भाग को समेटूंगी। 4 क्लासिक्स आप सुन रहे हैं चयनिका के साथ और ऋतुपर्ण घोष की जब बात हुई है तो मेमोरीज इन मार्च का ये गाना शैलदा की आवाज़ में आप सबको सुनवाना चाहूंगी। इसके बाद एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक लेंगे हम, सुनते रहें, साथ रहें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय

0: संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with leaders of Iran,

0: यूरेशिया के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO आज एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच बन चुका है। आज SCO के 10 सदस्य हैं। इनका संयुक्त क्षेत्रफल करीब 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर और आबादी 3,40,00,000 से अधिक है। संगठन के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 25% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 15% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन SCO की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है। इस संगठन की शुरुआत सीमा क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों से हुई थी। धीरे धीरे इसका दायरा सुरक्षा से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था, व्यापार, संपर्क, संस्कृति, ऊर्जा, पर्यावरण, तकनीक और लोगों के बीच संपर्क तक पहुंचा। और आज जब SCO अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब संगठन का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित हो रहा है। भारत भी इस शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सुरक्षा, संपर्क तथा अवसरों से जुड़े भारत के प्राथमिकता वाले मुद्दों को सामने रखेंगे। तो आखिर SCO की शुरुआत कैसे हुई, पिछले 25 वर्षों में ये संगठन किस तरह बदला और इसमें भारत की भूमिका किस तरह विकसित हुई, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
1: शंघाई सहयोग संगठन की कहानी को समझने के लिए हमें 1990 के दशक में वापस जाना होगा। उस समय चीन और उसके पड़ोसी मध्य एशियाई देशों के बीच सीमा क्षेत्रों में विश्वास बढ़ाना और सैन्य तनाव कम करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से वर्ष 1996 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस और ताजिकिस्तान ने सीमा क्षेत्र में सैन्य विश्वास निर्माण से जुड़ा समझौता किया। इसके बाद 1997 में सीमा क्षेत्र में सशस्त्र बलों की पारस्परिक कमी से संबंधित समझौता हुआ। इन 5 देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय बैठकों की व्यवस्था को शंघाई 5 कहा गया। फिर 4 जुलाई 2000 को दुशांबे घोषणा में शंघाई 5 को विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग की एक व्यापक क्षेत्रीय संरचना में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसी दौरान उज्बेकिस्तान भी इस प्रक्रिया में शामिल हुआ और इसके ठीक 1 साल बाद आया वो ऐतिहासिक दिन जिसने इस पूरी प्रक्रिया को एक नए संगठन का रूप दिया। 15 जून 2001 चीन के शंघाई शहर में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की स्थापना की घोषणा की। संगठन ने स्पष्ट किया कि वो किसी दूसरे देश या क्षेत्र के खिलाफ बनाया गया सैन्य गठबंधन नहीं है। इसके बजाय ये खुलेपन, संवाद और विभिन्न देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के सिद्धांत पर काम करेगा। इसके बाद SCO के संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया। 7 जून 2002 को सेंट पीटर्सबर्ग में SCO चार्टर पर हस्ताक्षर हुए जो संगठन का मूलभूत दस्तावेज है। ये 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ। यहीं से SCO की यात्रा एक सुरक्षा केंद्रित समूह से एक व्यापक बहुपक्षीय संगठन की ओर बढ़ने लगी।
0: SCO के स्थापना के शुरुआती वर्षों में सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता प्रमुख विषय रहे, लेकिन समय के साथ संगठन ने आर्थिक और मानवीय सहयोग को भी अपने एजेंडे में शामिल किया। 2004 में स्थायी संस्थाओं के गठन के बाद 2005 का अस्ताना शिखर सम्मेलन भी संगठन के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
2: SCO के विकास की कहानी कई महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों से होकर गुजरती है। 2005 का अस्थाना शिखर सम्मेलन इस विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उस समय तक SCO सेक्रेटेरिएट और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी RATS काम कर रहे थे और संगठन अपने बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। समय के साथ SCO में आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग की व्यवस्थाएं विकसित हुई। SCO की संस्थागत संरचना में राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद के अलावा सरकार प्रमुखों यानी प्रधानमंत्रियों की परिषद, विदेश मंत्रियों की परिषद, राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद और विभिन्न मंत्रालयों तथा एजेंसियों की बैठकें शामिल है। यानी SCO केवल सालाना शिखर सम्मेलन तक सीमित संगठन नहीं है। इसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बैठकें और कार्यतंत्र चलते हैं। जून 2017 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुए शिखर सम्मेलन में भारत को

0: संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। भारत के प्रवेश के बाद एससीओ का भौगोलिक और राजनीतिक दायरा काफी बढ़ गया। इसके बाद संगठन के एजेंडे में मध्य एशिया के साथ साथ दक्षिण एशिया से जुड़े मुद्दों की प्रासंगिकता भी बढ़ी। 2023 में ईरान एससीओ का पूर्ण सदस्य बना, जबकि बेलारूस को पूर्ण सदस्य बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और 2024 में बेलारूस संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया। एससीओ अब केवल राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का मंच नहीं है, ये विभिन्न स्तरों पर निरंतर संवाद और सहयोग की एक संस्थागत व्यवस्था बन चुका है और इसी क्रम में 2025 का तियानजिन शिखर सम्मेलन भी महत्वपूर्ण रहा। चीन की अध्यक्षता में हुए इस शिखर सम्मेलन में राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उद्योग, सतत विकास और नई तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। सम्मेलन में एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अंटिल 2035 समेत 24 दस्तावेजों को मंजूरी दी गई।
1: भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना, लेकिन सदस्य बनने के कुछ ही वर्षों बाद भारत ने संगठन की अध्यक्षता भी संभाली। सितंबर 2022 से जुलाई 2023 तक भारत ने पहली बार एससीओ की अध्यक्षता की। भारत की अध्यक्षता का प्रमुख संदेश था टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। सिक्योर यानी एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमी एंड ट्रेड, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, R for respect for sovereignty and territorial integrity और E for environment। अब सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
2: भारत ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में एससीओ की रोटेटिंग चेयरमैनशिप संभाली। इसके बाद भारत की पहली अध्यक्षता के दौरान 134 बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 14 मंत्री स्तरीय बैठक शामिल थी। भारत ने अध्यक्षता के दौरान संगठन के एजेंडे में कुछ नए सहयोग क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाया। इनमें स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे क्षेत्र शामिल थे। भारत की अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू था एससीओ सहयोग को केवल सरकारों के बीच संवाद तक सीमित न रखना। इसके लिए संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को भी महत्व दिया गया। वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ की पहल कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया। वाराणसी में एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मार्च 2023 में एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग और टूरिज्म एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक भी वाराणसी में हुई। इन बैठकों में एससीओ टूरिज्म ब्रांड को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और मेडिकल तथा हेल्थ टूरिज्म में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पर्यावरण भी भारत की अध्यक्षता के प्रमुख क्षेत्रों में रहा। अप्रैल 2023 में एससीओ देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने मिशन लाइफ और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत ने सहयोग पर जोर दिया। एससीओ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में स्वास्थ्य सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था, संयुक्त शोध और आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के इस्तेमाल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत की अध्यक्षता का समापन 4 जुलाई 2023 को हुआ एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट के साथ। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसके अलावा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने तथा डिजिटल परिवर्तन में सहयोग से जुड़े संयुक्त वक्तव्य भी जारी किए गए।
1: 25 वर्षों की एससीओ यात्रा को अगर एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत सीमा क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा से हुई, लेकिन समय के साथ ये बहुआयामी क्षेत्रीय सहयोग के एक बड़े मंच में बदल गया और इसी बदलते परिदृश्य में भारत की भूमिका एक ऐसे सदस्य देश की है जो सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, तकनीक, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क को भी क्षेत्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण आधार मानता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चाय और क्लासिक्स के दूसरे भाग में चैनिक आपका स्वागत करती है और केवल 10 मिनट मिलते हैं हमें इस दूसरे भाग में, तो चलिए जल्दी जल्दी हमारी जो बातें रह गई अधूरी उनको कर लेते हैं पूरी और सुनते हैं लाजवाब हिंदी फिल्मी गीत। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हमारे जो शहर है कोलकाता शहर, भारत के सबसे पुराने और एकमात्र बचे हुए चाइना टाउन का घर है, जिसका इतिहास 200 से अधिक वर्षों में फैला हुआ है और इसके बहुलवादी ताने बाने का एक जीवंत प्रमाण है ये चाइना टाउन। हमारा जो ये जो शहर इंक्लूसिव है और न जाने कितनी तरह के लोग यहाँ रहते हैं मिलजुल कर, तो इस समुदाय की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक इसका जो प्रभाव है जिसमें यहाँ के लोगों के सूक्ष्म और जो उनके जो फॉर्मल जो एक लाइफस्टाइल है उसके अनुभव शामिल हैं, तो मुख्य धारा में हमने काफ़ी हद तक इसको देखा है कि शामिल नहीं ये हुआ है, अनदेखा ही रहा है। तो अर्बन प्लानर्स और हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट्स की एक टीम ने अब इसे बदलने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। जो चीनापाड़ा है, हेरिटेज गैलरी वहाँ पर एक बनेगी, कोलकाता के चीनी समुदाय के इतिहास को समर्पित ये पहली गैलरी होगी। 5 सितंबर को ये गैलरी खुलेगी। सेंट्रल एवेन्यू के पास ब्लैकबर्न लेन पर स्थित ये गैलरी एक चीनी कम्युनिटी क्लब से बनाई गई है, जो ट्रिनिटी बाजार और आसपास के क्षेत्रों में आज भी मौजूद कई क्लब्स में से एक है। गैलरी खुलने के बाद टीम ट्रिनिटी बाजार में कभी मशहूर रहे रविवार की सुबह के चाइनीज ब्रेकफास्ट स्ट्रीट को फिर से पुनर्जीवित करने पर काम करने की योजना भी बना रही है, जो फिलहाल अच्छी हालत में, उतनी अच्छी हालत में नहीं है। अभी भी वैसे लोग जाते हैं वहाँ पर, लेकिन उसको एकदम चंगा कर देना चाहता है ये जो दल है। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कोलकाता के कल्चर का एक अभिन्न अंग है ट्रिनिटी बाजार, और उसके पुनरुद्धार की हर कोशिश को हम यहाँ पर साधुवाद देते हैं।

और देखते ही देखते ही कार्यक्रम के एकदम अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। और अगर आपको मैं लोकल इवेंट्स के बारे में बताना चाहूं तो 3 सितंबर ढाकुरिया नजरुल मंच पर शतवर्षेर आलोय महानायक उत्तम कुमार कॉन्सर्ट का आयोजन किया जा रहा है। और नेताजी इंडोर स्टेडियम में रविवार 6 सितंबर एक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इनमें से किसी भी इवेंट में डू ज्वाइन इन अगर आपका दिल कहता है। फिलहाल तो मेरा दिल कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मैं नहीं कह रही, मेरा दिल नहीं, घड़ी का दिल कहता है, घड़ी की सुइयां कहती है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर आपसे मिलने में जरूर आऊंगी। फिलहाल चलते चलते आप सबके लिए चाय और क्लासिक्स की तरफ से ये अंतिम गीत। और अगर आप मेरे साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए 7:02 पर FM रेनबो कोलकाता पर, 6 लोक पर मैं रहूंगी। फिलहाल तो आप सबके लिए लता मंगेशकर बड़े दिल वाला से।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स।

0: Monday. We shall be taking your calls on your market-related queries. But please do remember that we do not address stock or company-specific queries. And the numbers on which you can call us are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, please add a prefix of 011 as a code to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
1: Dhanyavad Lalima, aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath market mantra hazir hai. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार दीपशिखा मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है
2: धन्यवाद सुबोध जी
1: पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा ने चटैंग
0: जी थैंक यू सुबोध यस फ्रेंड्स लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे वेल बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100 इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोज बाय 7.8% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा गिरा निफ्टी 24,100 से नीचे पहुंचा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल

0: Well, before we move ahead with more financial news, friends, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Ji, Lali ji, baab, let's get going. Khabron ka silsila shuru karne se pehle chalte hain ek caller ke paas jo jud gaye hain.
0: Ji ji.
1: Delhi se Satish हमारे साथ है. स्वागत है सतीश आपका. सवाल पूछे
0: जी. सतीश, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज.
2: यस, माय क्वेश्चन इज मैम कि गोल्ड और सिल्वर का अभी आउटलुक कैसा रहेगा आने वाले दिनों में.
3: सतीश जी, गोल्ड में अगर आप देखें पिछले टाइम पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा करेक्शन आया था. उस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी लोगों के लिए, लेकिन अब चूंकि जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें कि क्राइसिस फिर जो है थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है और उसको लेके कंसर्न्स हैं, हो सकता है कि प्राइसेस जो हैं प्रेशियस मेटल्स के अभी और बढ़ें. तो आप जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें. अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा जो है प्रेशियस मेटल्स का रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है दोनों प्रेशियस मेटल्स की वो काफ़ी अच्छी है.
0: एंड गोल्ड एंड सिल्वर लव जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी.
3: एब्सोल्युटली.
1: चलिए राइट जी, खबरों का सिलसिला शुरू करें. हम पहले देखते हैं कि शेयर बाजार में क्या रहा. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 0.4% की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 307 अंक गिरकर 76,957 पर बंद हुआ. निफ्टी 95 अंक नीचे 24,080 पर आ गया. एनएसई के अन्य सूचकांकों में मिला जुला रुख रहा. मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 0.7% नीचे आ गया. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आज कारोबार की शुरुआत से ही सूचकांकों में कमजोरी रही. पूरे सत्र में अधिकांश सेक्टर्स पर बिकवाली का दबाव बना रहा.
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% down today. The

0: declined 307 points to close at 76,957. The Nifty dropped 95 points to settle at 24,080. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index gained 0.2%, while the small-cap 100 index dipped 0.7%. Earlier, the markets opened on a weak note as escalating geopolitical tensions in West Asia and rising crude oil prices weighed on investor sentiment. Both the indices witnessed selling pressure across most sectors throughout the session.
1: और देखते हैं कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का शेयर आज कैसे परफॉर्म किया सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें अडानी पोर्ट्स में 4.1% आईटीसी में लगभग 3.7% और भारतीय एयरटेल में लगभग 2.8% की गिरावट देखी गई इसके उलट सन फार्मा में 1.9% आईसीआईसीआई बैंक में 1.7% और एक्सिस बैंक में 1.5% की बढ़त दर्ज की गई।
0: Let's take a look at the sectoral indices now. And on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, utilities decreased 2.6%, metal lost 2.4%, services dipped 1.9%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt rose over 1.2%. Mid-small private banks gained 1.2%, and Bankex added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,572 companies declined, 1,858 advanced, and 250 remained unchanged.
1: अगले कॉलर के पास जाने से पहले बता दे रुपए का हाल अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 22 पैसे बढ़कर 95.17 रुपए पर बंद हुआ
0: एंड नाउ लेट्स कनेक्ट टू बिहार वेयर टिंकू राय इज ऑन द लाइन जी टिंकू जी सवाल पूछिए अपना जी
2: नमस्ते मैम
0: नमस्कार
3: नमस्ते टिंकू जी
2: मेरा मेन यही दो सवाल है एक जो पीपीएस अकाउंट जो खुलता है वरिष्ठ नागरिक के लिए वो जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या अंतर है ब्याज इंटरेस्ट या अंतर है और एक ये है जो एटीएम कार्ड हम किसी बैंक से लेते हैं क्या इसके साथ इंश्योरेंस मिलता है या ऐसी अफवाह है कोई बताता है 2 लाख का इंश्योरेंस इसका फ्री रहता है इस पर यही मेरा दो सवाल का जवाब चाहिए
3: टिंकू जी आपने जो सवाल किया है आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप देखेंगे तो बैंक्स जो हैं वो भी

0: सर्टिफाई करती है, सरकार की तरफ से वो ब्याज दरें तय होती हैं,
1: टैक्स नहीं लगता उस पे,
0: और टैक्स भी नहीं लगता है.
1: That's the most important thing.
0: दूसरा चीज है कि बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट तो रहता ही है, लेकिन अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है तो नॉर्मल सीनियर सिटीजन्स में रेट में फ्लक्चुएशन जिस तरह से होता है वो उतार चढ़ाव का गुंजाइश रहता है.
1: All right, and now he asked another question.
0: Insurance की बात आपने कही थी. Insurance के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, seniors वरिष्ठ नागरिकों के लिए insurance का है.
2: ATM कार्ड के साथ इन्होंने पूछा है कि ATM कार्ड के साथ इंश्योरेंस है या नहीं.
0: ATM कार्ड के साथ
2: एक्चुअली वो बैंक अकाउंट के साथ आपको एक छोटा सा इंश्योरेंस जो बैंक्स ऑफर करते हैं आजकल हर अकाउंट के साथ,
0: ज्यादातर बैंक्स करने लगे हैं वो, लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं है कि जो एटीएम कार्ड के साथ आपको सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस दिया जा रहा है.
2: जी, चलिए अगली खबर. आज की बड़ी खबर है जीडीपी. भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% रही थी. वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार बरकरार है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून तक के जीडीपी के तिमाही अनुमान जारी किए. अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को तृतीय क्षेत्र ने प्रमुख रूप से मजबूती प्रदान की है. इस क्षेत्र में 10% की वृद्धि देखी गई. इसमें मुख्य योगदान वित्त, रियल एस्टेट, आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं का रहा, जिनमें 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई. द्वितीय क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि हुई. प्राथमिक क्षेत्र में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई. इसमें मुख्य योगदान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का रहा, जिनमें चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6% की बढ़ोतरी देखी गई.
1: So, how would you... All right, I think we go ahead and see the Prime Minister's reaction. Well, the Prime Minister has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of financial year 2026-27 a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country, despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. And before we go any further, we have Nitin online calling us from Delhi. Yes, Nitin ji, yeah, sawal puchhega apna ji.
3: Dhanyawad ji.
1: Ji.
3: Madam, mera ye puchna hai ki main senior citizen hu aur mere abhi 1 mahine baad meri maturity ho jayegi, abhi meri mature ho jayegi. To lagbhag अच्छी खासी है, 30-35 लाख की है. तो इसमें ये मुझे
0: बताइए
3: कि हमें मार्केट में पैसा लगाने की कोई जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या और से बेस्ट एफडी से क्या मिल सकता है, या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड, कहाँ हम इस चीज के लिए सोचे हैं? क्योंकि बच्चों के लिए, अगर बच्चे करते हैं तो इसके लिए तो वो कर सकते हैं.
2: तो आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं?
3: लगभग जैसे हम हर साल एक साल की एफडी होती है, 2 साल की भी होती है, तो अभी 1 साल की मेरी मैच्योर हो जाएगी और 2 साल की मेरी अगले साल मैच्योर होगी कुछ एफडियां, तो हम उसमें जाते हैं और सीधा हो जाता है, इसमें कोई सिद्धती नहीं हमें महसूस होती. शेयर मार्केट के लिए थोड़ा ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, मार्केट की उतार चढ़ाव और क्या कैसा उसका तरीका
0: है. एकदम आपने सही कहा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए और इसीलिए मार्केट मंत्रा में आपको हम जानकारी देते हैं. आपकी एफडी जो है, एक तो आप कम अवधि के लिए उसको बैंक के साथ रखते हैं नितिन जी, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे लंबी अवधि तक रखेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको उसमें ब्याज भी बेहतर मिलेगा. अगर आप बाज़ार की तरफ आप उसमें कुछ अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं, तो जो थोड़े सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं,

0: लेकिन आप वो देखिएगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए करते हैं तो आपको बेहतर उसमें रिटर्न्स मिल पाएंगे.
1: Yeah, considering the fact he's a senior citizen, so risk appetite should be low.
0: Low,
1: and,
0: exactly.
1: I mean, short-term investment is good.
0: You have money in hand.
2: Yes. और उन्हें FD पर rate भी ज़्यादा मिलता है.
0: Exactly.
2: जी. हाँ. जी. दीपशिखा, आज की आप बड़ी खबर पे लौटते हैं. हम GDP के आंकड़े हैं जो बहुत उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं.
0: बहुत ही बेहतर आंकड़े जो हैं वो आए हैं, क्योंकि
2: खासकर जब दुनिया ऐसी चुनौतियों से गुजर रही थी,
0: हमने देखा
2: उस बीच हमारे देश का प्रदर्शन
0: जो है, दो ढाई महीना जो है, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था ये. तो उस दौर में, और अगर आप आंकड़े भी देखें जीडीपी के, तो निवेश में बढ़ोतरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कहना चाहिए सेक्युलर ग्रोथ है. अगर आप देखते हैं कृषि क्षेत्र में भी जो एवरेज ग्रोथ चल रही है उसी हिसाब से है. तो आंकड़े जो हैं बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही बेहतर आंकड़े हैं, और उम्मीद से बहुत ही बेहतर आए हैं, क्योंकि ये आशा नहीं थी कि ये क्वार्टर जो है हमारा इतना मजबूत रहेगा.
1: एंड द सर्विसेज सेक्टर एज ऑलवेज वी डू
0: सर्विसेज सेक्टर हैज ऑलवेज डन वेल, एंड सो इट हैज रिमेन्ड, यू नो, इट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल. बट आई थिंक द important or I think the fact which is leaping out is, you know, how investment has grown and how it is doing now. Indications are that maybe, you know, private investment has started to show some positive signs. So which is a very positive indication coming out from the data.
2: जी, खबरों और चर्चा का सिलसिला तो चलता रहेगा. अभी चले अगले कॉलर के पास. दिल्ली से सतपाल सिंह हमारे साथ हैं. सतपाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
3: नमस्कार जी.
2: नमस्कार.
0: नमस्कार सतपाल जी.
3: हाँ जी.
1: जी, सवाल पूछिए.
3: मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो अमेरिका और ईरान का जो ये चल रहा है, जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है काफी टाइम से, छह महीने हुए हैं, तो ये बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर भी आगे चल सकता है इस सिचुएशन में? पहला क्वेश्चन तो ये है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड के प्राइस कैसे रहने वाले हैं अगले छह महीने में?
0: सतपाल जी, देखिए, जो जियोपॉलिटिकल संकट है वो तो हमने आज भी देखा, वो ख़त्म नहीं हो रहा है वेस्ट एशिया में. वहाँ पर समाधान जो है, एक कहना चाहिए जैसे ड्यूरेबल पीस जो है, वो नहीं आ पा रही, और उसकी वजह से बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है. लेकिन आपने कहा कुछ एक क्षेत्र, अगर हम देखें आज के हमारे जीडीपी के आंकड़े आए हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है इकॉनमी का. उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति में है. आगे जाने वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, आप क्योंकि अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है तो क्रेडिट का डिमांड रहेगा. फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र आप देख सकते हैं. सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी खर्चा कर रही है, तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो देख सकते हैं. डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी जो है वो काम हो रहा है, डिफेंस में आप देख सकते हैं. फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं. तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में उम्मीद की जाती है कि ये आपको बेहतर रिटर्न्स देंगे. आपने कहा गोल्ड जो है, चूंकि जियोपॉलिटिकल अस्थिरता हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से चल रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह आप उसको देखिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो.
1: राइट, वी कनेक्ट टू भोपाल नाउ, एंड शंकर जी हैज जॉइंड अस. यस शंकर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. या
4: नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम.
0: नमस्ते.
4: माय क्वेश्चन इज अबाउट निफ्टी, व्हिच हैज बीन होवरिंग एट 24,000 फॉर लास्ट 3 years कंसेक्यूटिवली, 24, 25 एंड नाउ 26. The major reason could be FII is pulling out, and FII has pulled out because they fear that dollar will rise and they have to withdraw in dollar, and dollar will rise because of the international situation. So in this scenario, and also we have imposed, you know, there are dollar fluctuation ke alawa ek aur problem hai ki they are taxed here at 12.5% on long term capital gain and short term capital gain. Isn't it time to for government to think something about this, because okay, economy is doing well, but the market is not performing, so it is not reflecting in our countries, you know, one of the major factor which is the basically indicator.
0: Very interesting question, Shankar ji. You know, a lot of investors have been representing to the government, but we saw they did, you know, give some relaxation with regard to investment for foreign portfolio.

0: portfolio investors in government securities. You know, it's a wider issue. Taxation is a wider issue, and there is a give and take. There is a lot of demand. Government has to carry out a lot of social expenditure. So I'm sure if they feel compelled to take this decision, they will at some juncture. I'm sure the policymakers are examining it.
1: जी, अगले कॉलर है कोलकाता से अतनु साहा, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
2: गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्र सर। माय क्वेश्चन इज मैम, दिस इज हेजिंग अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी अदर देन गोल्ड, व्हाट वुड बी मैम? थैंक यू।
1: और क्या हो सकता है?
0: और क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप जो है अगर मार्केट के हिसाब से हेज करना चाहें तो आपको कम रिटर्न्स पे बैंक्स देखने पड़ेंगे, एफडीज देखने पड़ेंगे। यू एक्चुअली हैव टू लुक एट अ मोर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इन विच यू हैव यू नो ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज मिक्स, विच विल गिव यू सम हेज अगेंस्ट वेरी शार्प फ्लक्चुएशंस और वेरी शार्प फॉल इन मार्केट्स।
3: All right, let's go ahead with some more news. 18 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, that's ISP, recorded year-on-year expansion in June 2026, with 8 posting double-digit growth. According to the subsectoral trial, ISP data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MoSPI, today, real estate led the pack with growth of 24.7%, followed by retail trade at 18%. Wholesale trade grew by 15.1%, administrative and support services rose 14.4%, and IT and computer related services increased 13.5%. Meanwhile, air transport was the only subsector to contract, falling 6% from a year earlier. Moving ahead, the government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav said this while addressing the media in New Delhi today. After releasing the notifications for all the six pillars of the Semicon India Programme 2.0, Mr. Vaishnav noted that there is confidence among global semiconductor industry stakeholders that India is the right destination for major investments in the coming decades.
1: Yes, there is some reaction. India Electronics and Semiconductor Association ne aaj Semicon 2.0 ki adhikarik adhisuchna ka swagat kiya. Ye karyakram Semicon India program ki safalta ko aage badhate hue Bharat ki semiconductor kshamtaon ko aur mazboot karne ki disha mein ek mahatvapurna kadam hai. Association ne apne bayan mein kaha ki Semicon 2.0 का व्यापक दृष्टिकोण भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता को काफी मजबूत कर सकता है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। और लालिमा, एक खबर जो अभी हमने आपने पढ़ी थी आईएसपी की, उस पर शायद हमें कुछ और गौर करने की जरूरत है। दीपशिखा, क्या कहना आपका?
0: देखिए, हम जीडीपी की चर्चा कर रहे थे। सर्विस क्षेत्र जो है काफी रोबस्ट स्थिति में है, उसका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है, बेहतर कर रहा है। ये इंडेक्स जो है अभी थोड़ा नया इंडेक्स है, इसका ट्रायल पीरियड ही चल रहा है,
1: जी।
0: तो उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, बट हाँ, काफी हद तक कैप्चर करता है ये सर्विस क्षेत्र का परफॉर्मेंस।
1: अच्छे संकेत
0: तो अच्छे संकेत हैं।
3: ऑल राइट, नाउ वी आर जॉइंड बाय अमित झा फ्रॉम दिल्ली। जी अमित जी, सवाल पूछिए। जी
4: नमस्कार लालिमा मैम, आपका नमस्कार मैम।
3: नमस्कार जी, जी
4: आप रेनबो पे आते हैं तो अच्छा लगता है, हिंदी बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आपका।
3: जी जी, थैंक यू।
4: दीपशिखा मैडम से नमस्कार मैडम
0: जी नमस्ते अमित जी बताइए
4: मैडम आपसे मेरा प्रश्न ये जैसे जीडीपी का आंकड़े पे तो आप लोगों ने चर्चा कर ही लिया है लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है मैम कि अगर हम 2047 में विकसित अर्थव्यवस्था की मतलब हमने टारगेट ले रखा है तो क्या ये जीडीपी का वृद्धि दर इतने प्रतिशत के हिसाब से हम 2047 में विकसित भारत बन पाएंगे या वृद्धि दर और तेज करने की जरूरत है अगर है

0: तो किन सेक्टरों पे ज्यादा फोकस करना? धन्यवाद।
1: अमित जी देखिए, अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो उसके लिए चहुमुखी विकास जरूरी होगा। विकसित देश बनने के लिए आपको वृद्धि ग्रोथ तो चाहिए ही, आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उन पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने ये लक्ष्य तय किया हुआ है और इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है।
2: जी, अगली खबर है अब एशियाई और यूरोपीय बाजारों की। एशियाई बाजारों में साउथ कोरिया का कोस्पी लगभग 1% पढ़कर बंद हुआ, जबकि जापान का निक्केई 0.1% नीचे आ गया। यूरोपीय बाजारों में कुछ देर पहले तक लंदन का फुटसी 0.2% ऊपर था, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.7% नीचे कारोबार कर रहा था।
3: And let's take a look at the oil prices. Well, global crude oil prices rose over 3% today amid renewed geopolitical tensions. United States struck Iranian military targets on Larak Island in the Strait of Hormuz last night, and Tehran said it had retaliated. Brent crude was trading 3% up at $90 and 78 cents per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was trading 3.5% higher at $86 and 31 cents per barrel when reports last came in.
2: और सोने और चांदी का हाल तो देखे, लेकिन दीपशिखा ये जो अभी लालिमा बता रही थी क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बातें, जब तक लगता है जो अशांति है, और हम अभी पश्चिम एशिया की बात करें उससे भी पहले से अगर हम देखें तो जो सीधे हमारे क्रूड सप्लाई को उतना प्रभावित नहीं कर रहा था रूस और यूक्रेन, उसके बाद और अभी ये पश्चिम एशिया तो खैर पता नहीं रह कर ये चल ही रहा है। इसके साथ लगता है अब कहाँ, लेकिन भारत ने इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें जितनी लोगों को आशंकाएं थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इतनी क्राइसिस जाएगी, लेकिन भारत ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है।
1: बहुत, आप देखिए जो जीडीपी के आंकड़े हैं इसमें इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। आप देखिए सप्लाई चेन हमारी, उसको बना के रखना, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, उनका सप्लाई जो है उनके इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, हॉर्मोज से आता है, उस क्षेत्र से आता था। तो उसके बावजूद हम जो है सप्लाई कायम रख पाए, अर्थव्यवस्था को जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट दे पाए, और इसीलिए अर्थव्यवस्था अभी मजबूत स्थिति में है, खड़ी हुई है। और एक बहुत ही गहरा संकट था उस वक्त, अब तो हालांकि अभी भी स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये संकट जो है उस हद तक थोड़ा सप्लाईज वहां से आने लगा है, तो हो सकता है कि आगे जो है अर्थव्यवस्था और मजबूत बने, आगे चलकर
2: बेहतर प्रदर्शन करें।
1: हालांकि मॉनसून को लेके आशंकाएं हैं कि कंजम्पशन इंपैक्ट करेगा, लेकिन अब स्प्रेड जो है काफ़ी हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम शायद अगला क्वार्टर भी हमारा उतना ही मजबूत रहे।
3: एंड यू थिंक दीपशिखा वी डिड द वाइज थिंग टू डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज ऑफ ऑयल बिकॉज ऑफ द स्टिकी पॉइंट एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नॉट जस्ट फॉर ऑयल बट फॉर मेनी अदर थिंग्स विद इंपोर्ट, वी जस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मूव टू अदर कंट्रीज एंड नॉट गॉट स्टक एट वन और टू एज बिफोर।
1: एब्सोल्युटली लालिमा, एंड आई थिंक दिस इज वॉट इंडिया डिड। You know, we are trying to cut dependence on single source of supply, not just for energy, but for all raw materials. And that is what government is also advising, suggesting to the industry, that they should not be dependent on single source for their supplies. So have a wider basket of suppliers, so that if something happens to one part of, you know, in one area of geography, your supplies are still sort of remain.
3: Yes.
2: और देखिए सोने चांदी का हाल, भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 2.3% से ज्यादा गिरकर 155,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वहीं चांदी की कीमत 2.7% नीचे 237,199 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और दीपशिखा आज वक्त इतना ही है, नहीं तो सवाल और भी हैं चर्चा करने के लिए, विषय भी बहुत सारे हैं।
1: धन्यवाद सुबोध जी,
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आंकड़े जो हैं वो वैसे ही आई थिंक अपलिफ्ट कर रहे हैं,
2: सबका मूड अच्छा है।

0: जी बहुत बहुत शुक्रिया
1: धन्यवाद एंड फ्रेंड्स बिफोर वी क्लोज हियर्स अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100 India's real GDP grows by 7.8% in first quarter of current financial year and global crude oil prices surge. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang and my co-anchor Subodh Mishra signing off. Namaskar.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
3: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से भी मुलाकात की दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार बिश्केक
3: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है संयुक्त अरब अमीरात ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और यूएई की सुरक्षा स्थिरता तथा संप्रभुता के लिए खतरा है मंत्रालय ने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यूएई ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। उसने इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। यूएई ने मिसाइलों से जॉर्डन को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting discussed various aspects of bilateral ties. They reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Prime Minister Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy.

सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत

0: headwind in the market when you go out.
1: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর যে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অবস্থান করছে আগামী ২৪ ঘন্টায় তা ক্রমশ
2: নমস্কার আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादरो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध में बिताया गया हर दिन मानवता को पीछे धकेलता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम मानवता को नई आशा और उत्साह से भर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सभी भारतीय श्री पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और यूएई की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के लिए खतरा है। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with leaders of Russia, Iran, Kyrgyz Republic and Armenia on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi today held a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin in Bishkek. The Prime Minister said that moving forward with national interest as the paramount priority has been the shared approach of both the countries, and this will remain guiding principle of both nations in the future as well. During bilateral meeting with Russian President, Mr. Modi said both countries have consistently discussed the issue of Ukraine. He said India supports all efforts towards peace and will continue to do so. He added that every day spent in war sets humanity back, whereas every step taken towards peace fills humanity with new hope and enthusiasm. The Prime Minister said that we must move away from endless war towards an end to the war. Prime Minister Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, discussed various aspects of bilateral ties. They reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Prime Minister Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region.

0: आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर जो

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों

0: व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादरो जापारोफ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ. के शेखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट LNG और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के LNG समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों

0: कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत ने विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
3: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयीय समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे newsoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना

0: पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4247 से अधिक लोग अब भी लापता है। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जल भराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment.

0: मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्केन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल की घटना

0: कार्यक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that India-Russia relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Tomorrow, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of Shanghai Cooperation Organization. In Uttar Pradesh, at least 11 people, including 2 children, were killed and 5 others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. The firecracker manufacturing unit was reportedly being operated from a house situated in agriculture.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन समेत SCO के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की।

0: गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दसलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामयुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Today, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of the SCO. Prime Minister Narendra Modi, along with other SCO leaders, participated in the official opening ceremony of the 6th World Nomad Games in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, on Monday evening. The biennial event celebrates the rich sporting traditions, culture and heritage of nomadic civilizations, bringing together countries in a vibrant celebration of their shared culture. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire accident that occurred in the Kaushambi district of Uttar Pradesh. At least 11 people, including 2 children, were killed and 5 others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. In a social media post, President conveyed condolences to the families of those who lost their lives in this unfortunate incident. President Murmu also prayed for the speedy recovery of the injured. Prime Minister Narendra Modi also expressed

बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती।

0: ಬರ್ರಿ.
1: ಏ ಕೆನೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ರೇ
0: ಬೇಗ ಗಾನ.

মহেশে বৌকে ঘরে রাত্রে কাজের বেড়া জলের ঘাটে না।